मन शा मार दुबिदा सहज समाणी पाया नाम अपारा। हर रस चाख मन निर्मल हुआ किल बिख काटन हारा। शब्द मरो फिर जीवो सद ही ता फिर मर

दरगाह जापै से वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गुरु साहब जी दे मुबारक चरणा दे विच जुड़ मिल बैठी गुरु प्यारी सत संगत हाजरियां भर रहे सी गुरु चरणा विच आप जी जुड़ मिल बैठे हो। धन्नवाद है गुरु सवारी कीर्तन जथेदार भाई दिलबाग सिंह जी लुधियाने वाले ते उन्हां दे जथेदार जो आप जी नूं हर जस कीर्तन सरवण करवा रहे सन गुरु चरणा दे विच दीवान दी समाप्ति दी अरदास होई है। बख्शिश स्वरूप पावन हुक्मनामा गुरु साहब ने बख्शा है जो तीजे पातशाह धन सतगुरु गुरु अमरदास महाराज इतना दी मुबारक रसना तो उच्चारण किया होया मुबारक शब्द राग सोरठ दे विचों ये मुबारक शब्द जो आप जी ने मुख वाक के रूप के सरवण किया सह बख्शिश कर बख्शा होया ये पावन उपदेश साढ़े जीवन का साड़ी जिंदगी का आधार बने ये गुरु चरणों में अरदास है। और ये ही सजे हुए दवान की संपूर्णता है समाप्ति है कड़ा प्रसाद का वर्तारा हो रहा है जिन्होंने प्राप्त नहीं किया आप जी प्राप्त कर सकते हो। उपरंत गुरु का लंगर आई हुई समुची संगत वास्ते तैयार है सब ने आपो अपनी लोड़ मुताबक छक के जाने की कृपालता करनी तो आओ हुण सुखासन की सेवा नाल दी नाल सोहला बाणी जी का पाठ होगा गुरु साहब जी के स्वरूप ने जिस स्थाना वाल जाएंगे उपरंत आप सब ने गुरु चरणा विचों खुशी प्राप्त करने ने जुड़ मिल बैठी समुची संगत का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी सोहला राग गौड़ी दी की महला पहला जयकर कीर्ति आखी है करते का हुए विचारो तितकर गावो सोहला सिबरियो सृजनहारो तुम गावो मेरे निरपाओ का सोहिला हमारी जिस सोहिला सदा सुख हुई रहाओ नित नित जीड़ी संभालियन देखेगा देवनहार तेरे दान कीमत ना पवे तिस दाते कमल शुमार संबत साह लिखिया मिलकर पावो तेल दे सजन सी सड़िया जो होवे सब सुमेल कर करे हो पाहुचा सदड़े नित पवन सदन हरा सिमरिया नानक से दही अवन राग आसा महला पहला शे कर शे गुर शे उपदेश गुर गुर एको वेसे अनेक बाबा जय कर करते कीर्त होए सो कर राख वडाई तोय रहाओ वे सोए चसिया कड़िया पैरा थिती वारी मा हुआ सूरज को रुत अनेक नानक करते के किते वेस राग तनासरी महला पहला गगन मैथाल रवचन दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती धूप मल्यान लो पवन चबरो करे सगल बन राय फुलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वा जंत भेरी रहाओ सहस्त नैन नन नैन है तुहि कहो सहस मूर्त ननायक तोही सहस पद बिमाल नानक पद गंध बिन सहस्तव गंध विचलत मोही सब मैं जोत जोत है सोय तिस दे चानन सब मैं चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोत इस भावै सुवारती होए हर चरण कवर मकरंद लोभत मनो अन दिन मोहे आही प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग को होए जां तै तरणाए वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम करोड़ नगर बो भरिया मिल साधु खंडल खंडाए पूर्व लिखत लिखी गुर पाया मन हल मंडल मंडाहे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा ही रहाओ साकत हर साधना जानिया तेरे अंतर होमै कंडा हे ज्यों ज्यों चलै चुभै दुख पावै जमकाल सहसर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाने दुख जन मरण भव खंडा हे अविनाशी पुरख पाय परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजमा करो बिनंती सुन मेरे मीता संत टैल की बेला
ਇਹਾਂ ਖਾੜ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹ ਆਗੈ ਬਸਨ ਸੁਹੀਲਾ ਆਉਦ ਕਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈਣਾਰੀ ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾ ਸਵਾਰੀ ਰਹਾਉ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬੇਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸੇ ਜਗਾਈ ਪਿਆਵੈ ਇਹ ਰਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਨ ਜਾਨੀ ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਬਸੇਰਾ ਨਿਜ ਕਰ ਮਲ ਪਾਉ ਸੁਖ ਸਹਿਜੀ ਬਹੁਰ ਨ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਬਿਦਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ।

साहब जी, धन वाहिगुरु साहब जी। अमृत बाणी हर हर तेरी, सोना सोना होवे परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। धन वाहिगुरु साहिब जी। तिलंग महला पहला, घर तीजा। एक ओंकार सत गुर प्रसाद,

लीतड़ा लंब रंगाए, मेरा कंतना भावे चोलड़ा प्यारे, क्यों तन सिजै जाए। एह तन माया पाहया प्यारे,

प्यारे क्यों तन से जय जाए, हाँ कुर्बान जाओ मेहरबाना, हाँ कुर्बान जाओ, हाँ।

लैन जो तेरा नाव तिना कै हाँ सद कुर्बान जाओ रहाओ काया रंगन जेथिए प्यारे पाइये नाव मजीठ रंगण वाला जे रंगे साहिब ऐसा रंग ना डीठ जिनके चो

तूड़त ना की जे मिले जी, कहो नानक की अरदास। आपे साजे आपे रंगे, आपे नदर करे, नानक कामण कंते पावे, आपे ही रावे। आपे साजे आपे रंगे, आपे नदर करे।

जो मांगे तो मांगे बिया, जाते कुशल न काहूं तिया। मांगन मांगता एक मांग, नानक जाते परे पराग श्लोक। मत पूरी प्रधान ते गुर पूरे मनवंत, जे जाने प्रभु अपना नानक ते भगवंत पौड़ी। ममा जाहू मरम पछाना, भेटत सद संग पतियाना। दुख सुख हुआ कै समत बिचारा, नरक सुरग रह त्यो तारा। ताहू संग ताहू निरलिपा, पूरन घट घट पुरख बिशेखा। वारस मैं उहू सुख पाया, नानक लिप्त नहीं ते माया श्लोक। यार मीत सुन साजनो, बिन हर छूटन नाहे। नानक ते बंधन कटे, गुर की चरणी पाए पवड़ी। यया जतन करत बोबिधिया, एक नाम बिन कह लो सिधिया। याहू जतन कर होत छुटारा, वाहू जतन साध संगारा।

माया कारने दाह दिश ढूंढ न जाए, देवन हार दतार प्रभ निमुख न मन बसाए। लालच झूठ बिकारमो या संपै मन माहे, लंपट चोर निंदक महा तिन्हू संग बिहाई।

पौड़ी अखर मैं त्रिभवन प्रभतारे अखर कर कर बेद बेचारे अखर शास्त्र सिमृत पुराना अखर नाद कथन बखियाना अखर मुकत जुगत पै ब्रह्मा अखर करम किरत सोच धर्मा दृष्टमान अखर है जेता नानक पार ब्रह्म निर्लेपा। श्लोक हाथ कला में अगाम मस्तक लिखावती उर्ज रहे हो सब संग अनूप रूपावती उस्तत कहन न जाए मुखों तुहारिया मोही देख दर्श नानक बलिहारिया। पौड़ी

हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे हैप्पी हो अनहार हे संता के सदा संग निधाराय आधार हे ठाकुर हों दासरु मैं निर्गुण गुण नहीं कोय नानक दीजे नाम दान राखो ही परो इस लोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा ज्ञान भंजन गुरुदेव बंदिप सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत निरोधरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूर्त गुरुदेव पारस परस परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मज्जने परंपरा गुरुदेव कर

नमः। सातगुरे नमः। श्री गुरुदेवे नमः। अष्टपदी सिमरों सिमर सिमर सुख पावों। कल कलेश तन माह मिटावों। सिमरों जास बिसंपर कै नाम जपते अगणते अनेक कै। वेद पुराण सिमर सुधाखिर कीने राम नाम के आखिर।

सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाउ। प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम न सै, प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अंत न जागै, प्रभ कै सिमरन पौ न व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै। प्रभ का सिमरन साध कै संग, सर्ब निधान नानक हर रंग। प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निध, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभ कै सिमरन जप त पूजा, प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा। प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ कै सिमरन दरगाह मानी। प्रभ कै सिमरन होए सो भला, प्रभ कै सिमरन सो फल फला। से सिमरै जिने आप सिमराए, नानक ता कै लागू पाए। प्रभ का सिमरन सब ते ऊचा, प्रभ कै सिमरन उधरे मूचा। प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सबके सुझै। प्रभ कै सिमरन नाहीं जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा। प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय समाए। प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ को सिमरै से तनवंते, प्रभ को सिमरै से पतवंते। प्रभ को सिमरै से जन प्रवान, प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान। प्रभ को सिमरै से बेमोहताजे, प्रभ को सिमरै से सर्ब के राजे। प्रभ को सिमरै से सुखवासी, प्रभ को सिमरै सदा अविनाशी। सिमरन ते लागे जने आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला। प्रभ को सिमरै से पर उपकारी, प्रभ को सिमरै तन सद बलिहारी। प्रभ को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरै तन सुख बिहावे। प्रभ को सिमरै तन आत्म जीता, प्रभ को सिमरै तन निर्मल रीता। प्रभ को सिमरै तन आनंद कनेरे, प्रभ को सिमरै बसे हर नेरे। संत कृपा ते अंधन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग। प्रभ कै सिमरन कारज पूरे, प्रभ कै सिमरन कबू न चूरे। प्रभ कै सिमरन हर गुण बाने, प्रभ कै सिमरन सहज समाने। प्रभ कै सिमरन ने चलियासन, प्रभ कै सिमरन कमल विगासन। प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार। सिमरै से जन जिनको प्रमया, नानक तन जन शरणी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए। हर सिमरन पै सेध जति दाते, हर सिमरन नी चौ कुंट जाते। हर सिमरन तारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन क्यों सगले अकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा। कर कृपा से आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तन पाया। श्लोक

केवल नाम संग तेरे चले। जहां मुश्किल होवे अत पारी, हर को नाम खिन माए उधारी। अनक पुना चरण करत नहीं तरह, हर को नाम कोट पाप रहे। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख नेरे। सगल सेट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। ला करोरी बांधना परे, हर का नाम जपत निस्तर। अनक माया रंग तिख ना बुझावे, हर का नाम जपत आगावे। जे मार्ग के जाते केला, तें हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा त्याइये, नानक गुरमुख परम गत पाइये। छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जबत पार पराही। अनक बिगन जय आय संघारे, हर का नाम तत्काल उधारे। अनेक जोन जन मैं मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। हो मेला मल कबू न तोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे। ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाये साध के संग। जे मार के गन जाए न कोसा, हर का नाम हुआ संग तोसा। जे पेंडे महान गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जा पंत तेरा को ना सजानू, हर का नाम ते नाल पछानू। जय महाप्याण तवत बो काम, ते हर के नाम की तुम्हें उपर शाम। जहां तिरखा मन तुझे आकर खै, ते नानक हर हरे अमृत बरख। भगत जना की बरतन नाम, संत जना के मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उधरे जन कोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर योखद साधक मात। हर जन के हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन की नो दान। मन तन रंगर ते रंग कै, नानक जन के ब्रत विवेक। हर का नाम जन को मुकत जुगत, हर कै नाम जन को त्रिपत भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कपर न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कशना वियोग। जन राता हर नाम के सेवा, नानक पूजे हर हर देवा। हर हर जन कह मालक जीना, हर तन जन को वा प्रभ दीना। हर हर जन कह ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, शुन समाध नाम रस माते। आठ पैर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रकट नि छपै। हर की भगत मुक्त बो करे, नानक जन संकेते तरे। पार जाते हर को नाम, काम ते न हर हर गुण गाम। सबते उत्तम हर की कथा, नाम सन दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत दिवस है, संत प्रताप दुर्द सब नस है। संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तुल कशवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन को। इस लोक बहु शास्त्र बहु स्मृति, पेके सर्व टंडोल। पूज सनाही हर हरे, नानक नाम अमोल अष्टपदी। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, कठ शास्त्र सिमृत वखियान। जोग अभ्यास करम धर्म क्रिया, सगल त्याग बन मदे फिरिया।
अनेक प्रकार किए बोजतना, पुन दान हो मैं बोरतना, शरीर कटाए हो मैं कर राती, वर्त नेम करे बो पांती।

नौ खंड पृथ्वी फिरे चर जीवे माँ उदास तपी सरथी अगन माय हो मत प्राण कन कशव है वर भूम दान।

0: पढ़िया जेते बरस बरस, पढ़िया जेते मास, पढ़िया जेते यार जाओ, पढ़िया जेते सास। नानक लिखे एक गल होर हूं मैं चखना चाख महला पहला।
1: लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया, बो तीर्थ भविया ते तो लव्या। बो भे किया देही दुख दिया, सहोवे जी अपना किया। अन ना खाया साध गवाया, बो दुख पाया दूजा भाया। बस्तर न पैरे एरस कहरे, मोन विगुता क्यों जागे। गुर बिन सुता पागे उपिताना, अपना किया कमाना। अल मल खाई सिर शाई पाई, मूर्खंद पत गवाई। विड़ना वे किस थाए न पाई, रहे बिबाणी मणि मसाणी। अंत न जाने फिर पुछताणी, सतगुरु भेटे सो सुख पाए। हर का नाम मन वसाए,

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैचनहार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपा पार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करतार किस नाल की जय दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ डोबै पोर नानक वखाणे बेनती तुझ बाज कूड़ो।

पौड़ी सतगुरु वटवारे अजित मिलिया खसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया ने ती जगत ने हालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोई था वेला कि ना बिचारिया।

पितरी दे आगे वस्याणी है पितरी जोर करे वडिया हद लाल के मुस पिए करे नानक गैसू मिले जे खटे काले।

0: अच्छा बैठा है, सुचे अगे रखिन कोई ना पिट्यो जाए। सुचे हो कह जे व्या लगा पड़न सलो, को हत्ती जाए छुट्या किसे लगा दो। आन देवता पणी देवता बैसंतर देवता लू, पंजवा पाया किरता हुआ पाप वित। पापी सोतन गड्डिया थुका पाया तित, जित मुख नाम ना उचरै बिना वैरस खाए। नानक वे जानिए तित मुख सुखा पाए महला पहला।
1: बन जमिए बन निमिए बन मंगण वे आहो, पंडो होवे दोस्ती पंडो जले राहो। पंड मुआ पंड बालिए पंड हो वे बंदान, सो क्यों मंदा आखिए जित जमे रजान। पंडो ही पंडो बजे पंडा बाज न कोई, नानक पंडे बाहर आई को सच्चा सोई। जित मुख

तिलांग महला पहला, कार तीजा, एक ओंकार, सत गुर प्रसाद, एह तन माया पाहिया प्यारे, लीतड़ा लब रंगाए, मेरे कंतना पावे चोलड़ा प्यारे।

क्यों तन से जय जाए। हाँ कुर्बान जाऊं मेहरबान, हाँ कुर्बान जाऊं, हाँ कुर्बान जाऊं तिना कै लैन जो तेरा नाऊं, लैन जो तेरा नाऊं तिना कै

रंगण वाला जे रंगे साहिब, ऐसा रंग ना डीठ। जिनके चोड़े रतड़े प्यारे,

करके गोले वाहिगुरु जीओ तिलंग महला पहला घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद ए तन माया पाहिया प्यारे लीतड़ा लब रंगाए मेरा कंत न पावे चोलड़ा प्यारे क्यों धन सिजै जाए हौ कुर्बाने जाऊं मेहरबाना हौ कुर्बाने जाऊं कुर्बाने जाऊं तना कै

तू समरथ अकाथ्य अगोचर जियो पिंड तेरी रास रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास रहम तेरी सुख पाया सदा।

ब्राह्मण कह कह जन्म मत खोए, कहो रे पंडित ब्राह्मण कब के होए। ब्राह्मण कह कह जन्म मत खोए रहाओ, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूद। कहो कबीर जो ब्रह्म विचार सो ब्राह्मण कहियत है हमारे।

निर्हाओ आपे भंतम त्रिपम सार वाव जाके सूत प्रवाह संसार आपे शिव सर संजोगी आप निर्वाणे आपे भोगी जत कर पे कौ ताता सोए तिसबिन दूजा नाए कोए सागर तरिए नाम के रंग गुण गावे नानक साध संग मुकत भुगत जुगत बस जा कै उना नाए कि जनता कै कर कृपा जे सो प्रसन्न नानक दास तेई सही दम धन पैरो महला पंजमा भगता मन आनंद गोविंद अस्तित पै बिनसी सब जिंद पै ब्रह्म बिनस गए खिन माए पार ब्रह्म सया मन आए राम राम संत सा साए कर बार नाले परमेश्वर रब रहा पूर्ण सब ठाए रहाओ।

हर सा प्रीत मवरना कोय सार संभाले साचा सोए मात पिता सुत बंदन रायन आजुगात बहुत गुण गायन तिसकी तर प्रभ का मन जोर एक बिना दूजा नहीं हो नानक के प्रभ एम पुरखार्थ प्रभु हमारा स्वारे स्वारे स्वार्थ पैरो मल्ला पंजमा पै को पढ़िया सिमरता नाम सगल ब्याज मिटे तह गुण की दास के हुए पूर्ण काम राव हर के लोग सदा गुण गावे तिनको मिलिया पूर्ण धाम जंका दस बाचे दिन राते होए पुनी तरम राय जाम काम को लोभ मत निंदा सत्संग मिटे अपमान ऐसे संत बेटे बड़ भागी नानक तिन कै सतगुरबान पैरो महला पंजवा पंच पंच पंच मजमी जो पंचन राखै मिथ्या रसनान्य तुड़ पाकै चक्र बनाए करै पाखंड चूर चूर पतै जैसे त्रै रंड हर के नाम बिना सब झूठ बिन गुर पूरे मुक्त न पाई है साची दरगह साकत दरगह साकत मूठ रहाओ सोई कुचिल कुदरत नहीं जाने लिपिया था न सुचर मन अंतर मैला बाहर नि तो वह साची दरगह अपनी पद खोवै।

बार अनक दुख अनक रोग मिटै जासु ने नानक सेवा पार देव तट है घट है वर्त पूजा गवन पवन जात्र करन सकल फल पुने पैरो अष्टपदियां महला पहला।

जिस नाम रहा तिस बड़ परवारा, नाम बिना मन मुगा वारा, जिस नाम रहा तिसने चलासन, जिस नाम रहा तिस तख्त निवासन, जिस नाम हृदय सोसा चा साहा, नाम ही ना ही पत वेसा, जिस नाम हृदय सो सब मैं साचा, जिस नाम हृदय सो ने पूर्ण पुरख विधाता,

रावण जान तिन्नाम पाए जिस पे हो कृपाल, सासंग मलक है गोपाल। आवन जान रहे सुख पाया, को नाम तत्त्व तत् मिलाया। पैरो मल्ला पन्ना तिस कोट बिन के कोट बिन के ने अवतार, कोट बैवन जान के धर्मसाल, कोट महेश।

कोट गुना तेरे घर न जाए, कोट ध्याने कथा ज्ञान, कोट ध्याने तर ध्यान, कोट तपे सर तप ही करते, कोट मुनि सर मोहन में रहते, अवगत नाथ अगोचर स्वामी, पूर रहा कट अंतर जामी, जात कत देखो तेरा वासा, नानक को गुर की ओ प्रगासा, पैरों महला पंजमा,

है दीवाना, मुसमुस मनवास है शमाना। गंगा कह संग सलता बिगड़े, सो सलता गंगा निबरे, बिगड़ो कबीरा राम दोहाय, सार पे उनके तन जाय रहाओ। चंदन कह संग तरवर बिगड़ो, सो तरवर चंदन निबरे, पास कह संग तांबा बिगड़ो, सो तांबा कंचन निबरे। संतन संग कबीर।

जाता पितरा ने। गगन मंडल में लश्कर करे, सो सुल्तान छतर सिर धरे, जो की गोरख गोरख करे, हिंदू राम नाम उचरे, मुसलमान का है खुदा एक, वीर का स्वामी रिया समाये, महला अपना जो पातर को कहते देवता की वृता, हो वैसे जो पाथर की पानी पाए, जिसकी काल आ जाई जाए, ठाकुर हमारा सत बोलनता, सब जिया को प्रभ दान देता, राम तर दियो न जाना, अंध ब्रह्म का मोया पावे बंद, ना पाथर बोले ना किछ दे, फोकट कर में फल है सेव, जे मृत को चंदन चढ़ावे, उसते कहो कौन फल पावे, जे मृत को बिठा मायर लाए, ता मृत का क्या कट जाए, कह कबीरों कहूँ पुकार, समझ दे साकत का वार, दूजे पाए बोत कर गाले, राम भगत ऐसा सुकाले, जल में मीन माया के भेदे, दीपक पतंग माया के छेदे, काम माया कुंतर व्यापे, पुंग पृंग माया में कापे, माया नी माया सी मोनी पाई,

सा कत माखी यदक सुनता पे तुरे इष्ट तुरे उष्ट माया में पेला सिर चौरासी माया में खेला छह जतिनाथ छह जति माया के बंदा नवै ना सूर्य चंदा तपे तपी सर तपे तपी।

माया में परा, माया अंतर भिन्ने देव सागर इंद्रार्थ तेव कह बीच से उतर तिस माया, तब छूटे जब साधु पाया। जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक निसर, जब लग मे जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभु का स्वर है। ऐसा ज्ञान विचार मना हर की ना सिमरो दुख भंज ना रहाओ।

पार हो तेरा गुर प्रसाद ये पार उतरा। दास कबीर क्या समझाए केवल राम रहो लिव लाए रहो सत सह सलार है जाके स्वाप पलक पै कंबर ताके।

जुआ हुए बजगारी, दास कबीर तेरी बना समाना, भेस नजीक राख मैं माना, राख रह माना, सब कोई चलन कहता है हुआ ना, जानो बैकुंठ है कहाँ रहाओ, आप आप का मरना जाना, बातन बैकुंठ समान बखाना, जब लग मन बैकुंठ की आस, तब लगना है चरने वास, खाई कोट नकल परल पगारा, ना जानो बैकुंठ द्वारा, कह कबीर अब कही है का

छाला पर बैठे कबीर, कह कबीर को संग न साथ, जल थल रगन रखन रखन है रघुनाथ, पैरो कबीर जी ओषबदी कर दूजा, इको अंकार सतगुर प्रसाद, अगम तरंग घर रचो बास, जम है जोत करे प्रकाश, जी जम कह हो आनंद, जय पोड़े प्रबाल गोबिंद, ए जो राम नाम निबला गया, जरा मन छूटा है परम्पा गहरा, वर्ण वर्ण मन ही प्रीत, गोविंद गा हो मैं गावन गावे गीत, आनंद शब्द हो चुनकार, जय पोड़े श्री प्रभु श्री गोपाल, खंडल मंडल मंडल मंडा, त्रिय स्थान तीन तय खंडा, अगम गोचरिया बंत, पार न पावे को धरने धर्मांत, कदली पोप तू प्रगास, रस पंकज में लियो निवास।

सहस कोट भोकर्त पुराण दुर्जुन का मथ्या मान कंदर कोट जा के लवंतर अंतर अंतर मनसार कह के विष्णु पान दे अपह पद्मा गोदान पहरो बाणी नाम देव जी की कर पहले को अंकार सतगुर प्रसाद रे जे

संकोच असंकोट अन पूजा करी एक ना पूज ना मैं हरि प्रणवय नाम देव करना अनंत रूप तेरे नारायणा पार तन पर धारा पर अजता कह निकट बसै नर जो ना पजनते नारायणा तिनका मैं ना करो दर्शन राव इन कह पितर अंतरा जैसे बस दैसे नरा प्रणवत नाम देव ना कह बिना ना सो है बतीस लखना दूध कटोरे गड़वे पानी कपल गाय नामे दुहे आने दूध को पियो गोविंदे राय दूध पियो मेरे मन पति आए नहीं तो कर को बा बिरसाए रहा सोन कटोरी अमृत भरी ले ना मैं रागे तरी भगत एक भगत मेरे हृदय बस है ना मैं देख नारायण सह दूध पिया भगत कर गया ना मैं हर का दर्शन पया

काहू सो न की जय, रसना राम रसायन पी जय। अब जी जाना सी बनाई, मिलन गोपाल निशान बुझाई। उस तो निंदा करे नर कोई, ना मैं सी रंग पेटल सोई। कबो खीर खान की होना पावे, कबो कर का टुक मंगावे, कबो कून चने बिनावे। जो राम राख्या त्यों रही है रे भाई, हर की महिमा की कत न जाई रहाओ। कबो तो तलंग मचावे, कबो पाए पानी होना पावे, कबो खास पे सुहावे, कबो पून प्यार ना पावे।

छोड़ दुनिया को करो पावो बेड़िया तो ताल ना मंगावे गुण गोपा गंग जम जो उल्टी बह तो ना मारा करता रह साल कर जब सुमिति सुनी अजुना त्रिपम तने पाखंत बाज बला घर चढ़े गोबिंद आयला अपने पत पर की प्रतपाल घर चढ़े आए गोपाल कह तक तन कोडी करो कह तले करू पर तरो कह ता मुई गऊ देव जीवाए सब कोई देखे पति।

जमड़ की परी ने परगी, दूध है दो जमड़ की परी, ले ला ले बादशाह क्या कहते हैं, बादशाह महल में जाए औकड़ की कर लागी आए। काजी मुल्ला बिनती फरमाए, बख्शी हिंदू में तेरी गाय, नामा कह सुनो बादशाह, एक ही पतिया मुझे दिखा, इस पतिया का परवा साथ ताला सुल्तान, नाम दो सबरिया समाए, मिल हिंदू सब नाम में पह जाए, जो अब की बार न जीवेगा, नाम देव का पतिया जाए।

बसंत महला पहला। मेरी सखी सेली सुनो पाए, मेरा पिर रिसालू संग साए। ओह अलख ना लखिया कहो काए, गुर संग दिखायो राम राए। मिल सखी सेली हर गुण बने, हर प्रभ संग खेले वर कामन। गुरमुख खोजत मन मने रहाओ, मनमुखी दुहागण नाहे पियो। ओह कटकट रावै सर्ब प्रियो, गुरमुख थिर चीनै संग दियो। गुरु नाम दृढ़ाया जप जपेयो, बिन गुर भगत ना पाओ होए। बिन गुर संत ना संग दे, बिन गुर अंदले तंद रोए। मन गुरमुख निर्मल मल शब्द खोए। गुरमन मार्यो कर संजोग, एनस रावे भगत जोग। गुर संत सबा दुख मिटै रोग, जन नानक हर वर सहज जोग। बसंत महला पहला। आपे कुदरत करे साज, सच आप निबेड़े राज राज। गुरमत उत्तम संग साथ, हर नाम रसायण सहज आथ। मत बिसरस रे मन राम बोल, अपरंपर अगम अगोचर। गुरुमुख हर आप तुलाय अतुल तोल रहाओ। गुर चरण सरेवे गुर सिख तोर, गुर सेव त्रे तज मेर तोर। नर निंदक लोभी मन कठोर, गुर सेव ना पाई से चोर चोर। गुर तुठा बख्शे भगत पाओ, गुर तुठै पाइय हर महल ठाओ। पर हर निंदा हर भगत जाग, हर भगत सुहावी कर्म पाग। गुर मेल मिलावै करे दात, गुरसिख प्यारे दिन सरात। फल नाम प्राप्त गुर तुस दे, कहो नानक पावै विरले के। बसंत महला तीजा एक तुका। साहिब भावै सेवक सेवा करै, जीवत मरै सब कुल उदरै। तेरी भगत ना छोड़ो क्या को हसै, साच ना मेरे हृदय वसै रहाओ। जैसे माया मोहे प्राणी गलत रहै, तैसे संत जन राम नाम रवत रहै। मैं मूर्ख मुग्ध ऊपर करहो दया, तो शरणागत रहो पया। कहत नानक संसार के निफल कामा, गुर प्रसाद को पावै अमृत नामा। महला पहला। बसंत हिंडोल कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। साल ग्राम बिप पूज मनावो, सुकृत तुलसी माला। राम ना जब बेड़ा बांधो, दया करो दयाला। काहे कलरा सिंचो जन्म गवावो, काची टहग दिवाल काहे गच लावो रहाओ। कर हर हट माल टिंड प्रोवो, तिस पीतर मन जोवो। अमृत सिंचो पर हो क्यारे, तो माली के होवो। काम क्रोध दोए करो बसोले, गोडो तरती पाई। ज्यो गोडो त्यो तुम सुख पावो, कीर्तना मिट्या जाई। बगुले ते फुन हंसुला होवे, जे तू करे दयाला। प्रणवत नानक दासन दासा, दया करहो दयाला। बसंत महला पहला। हिंडोल साहुरड़ी वथ सब किछ साजी, पेवकड़ै तन वखे। आप कुचजी दोस ना देउ, जाना नाही रखे। मेरे साहेबा हो आपे परम, पुलाणी अखर लिखे से गावा। अवर ना जाना बाणी रहाओ। कड कसीदा पहरै चोली, ता तुम जानो नारी। जेकर राखे बुरा ना चाखे, होवे कंत प्यारी। जे तू पढ़िया पंडित बिना, दोए अखर दोए नावा। प्रणवत नानक एक लंगाए, जेकर सच समावा। बसंत हिंडोल महला पहला। राजा बालक